0: के लिए मैं आपके साथ आता हूँ, आपके पेश खिदमत में हाजिर करता हूँ अपना ये शो, जिससे आई होप कि आज आपका मंडे खूबसूरत हो ही जाएगा। किसी को भी ना तो मंडे पसंद नहीं आता, क्योंकि छुट्टी के बाद वापस रूटीन लाइफ में कौन ही जाना चाहता है, लेकिन जाना तो पड़ता है, क्योंकि भाई काम करेगा तभी आराम करेगा। मैंने कहीं तो पढ़ा था किसी ट्रक के पीछे, और कभी कभार ना ट्रक के पीछे बहुत ही बेहतरीन से शायरी ऐसे कोट लिखे होते हैं, और बात तो सही है यार, बस आराम करने से कुछ नहीं होता है, दिमाग में चलते रहता है यार काम तो कुछ नहीं किया। हाँ, काम करने के बाद जब आराम करते हो ना, तो भाई सुकून की नींद आ ही जाती है, तो उसके लिए मंडे उठकर ऑफिस जाना पड़ता है, काम को लगना ही पड़ता है। खैर, इसी का नाम तो ज़िंदगी है, और इसी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का काम मेरा भी है और आपका भी है। तो चलिए फिर आज की मॉर्निंग गुड करते हैं मेरे यानी के आरजे अदनान के साथ, बहुत सारी बातों के साथ, लेकिन एक गाना एंजॉय करते हैं ना। थोड्या वेळात पुन्हा एकदा मी भेटेल तुम्हाला, आजचा दिन विशेष काय हे जाणून घेण्यासाठी, बट त्योपर्यंत स्टे ट्यून
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। एक लड़का था जो रोज सुबह उठता, अलार्म बंद कर देता और सोचता था, यार आज रहने देते हैं ना, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। मैं जिम जाना हो, पढ़ाई करनी हो, कोई नया काम स्टार्ट करना हो, हर बार उसका एक ही डायलॉग था, कल से। एक दिन उसके पापा ने उसे एक छोटी सी बात कही, बेटा जिंदगी में हर दिन बड़ा काम करना जरूरी नहीं है, बस हर दिन कल से एक कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। उस दिन उसने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया, बस 10 मिनट वॉक किया, 20 मिनट अपने काम को दिया और रात को खुद से कहा, आज मैंने कम किया लेकिन किया तो सही। और धीरे धीरे वही छोटी स्टेप उसकी आदत बन गई। कुछ महीनों बाद उसकी लाइफ बदल चुकी थी। तो शायद मंडे का मतलब ये नहीं है कि आज से पूरी लाइफ चेंज करनी है, मंडे का मतलब ये है कि एक और चांस, आज बस एक छोटा सा स्टेप लो, क्योंकि कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़ी छलांग नहीं, सिर्फ एक कदम चाहिए होता है, समझे? तो ये बात याद रखिए और मंडे से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए जिंदगी में सक्सेस पाइए। किस्सों का कारवा with RJ Adnan on MGM 90.8 FM।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

करूं, चाहे फूलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार।

खानों के साथ खेलो जाए कली से।

0: इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
2: Wondering what's next?
3: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
2: where innovation meets excellence. Admissions are open
3: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
2: across diverse fields from engineering and AI to law.
3: Apply now at www.mgmu.ac.in
2: or call 9067612000.

नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सुन रहे हो आपका अपना रेडियो स्टेशन MGM 90.8 FM और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त और आज की मॉर्निंग में एक बहुत ही खूबसूरत और सोलफुल गाने की फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है अंजलि माने जी ने और गाना है

0: सच्ची कहा गया यार कि प्यार में ना तो मिलना और बिछड़ना दोनों जिंदगी का एक हिस्सा है। गुलजार साहब ने ये गाना लिखा था और राजेश रोशन जी का संगीत इस गाने को था। तुमसे मिला था प्यार हमें पुरानी यादों की गलियों में ले जाता है, ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की जादुई आवाज में ये खूबसूरत गाने की फरमाइश अंजलि जी ने की है, तो वही फरमाइश अभी हम पूरी करते हैं। और ये फिल्म थी खट्टा मीठा। चलिए फिर फरमाइश वाला गाना कंप्लीट करते हैं। बाय द वे आपकी भी ऐसी कुछ फरमाइश हो तो आप हम तक पहुंचा सकते हो बेझिझक। बस आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी फरमाइश, और आप ये एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।
1: तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे
2: का मिल जाना ही तो सब कुछ।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: बात है उस स्कूल बैग की जिसमें किताबों से ज्यादा टेंशन भरी पड़ी है, आज के वक्त में हमने देखा भी होगा। तो भाई साहब, एक ऐसा सर्वे हुआ था जिस सर्वे के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें पता चला है कि बच्चों का हैप्पीनेस इंडेक्स एकदम कम हो चुका है। इस सर्वे में तकरीबन 8000 से ज्यादा बच्चे थे और डेटा कहता है कि 8वीं क्लास में उनमें से 65% बच्चे खुश थे, लेकिन जैसे ही वो 12वीं तक पहुंचते हैं तो खुशी का लेवल गिरकर सीधे 48% हो जाता है। मतलब 17% खुशियां रास्ता बदल देती है करियर और कॉम्पिटिशन को लेकर। ये बच्चों में स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं कि कॉन्फिडेंस की बात करें तो लड़कियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस तकरीबन 52% बचा है, जबकि लड़कों में 64% है। और स्ट्रेस से निपटने के लिए हमारे देश के होनार बच्चे क्या करते हैं, उन 70% बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, गाने सुनते हैं। मतलब स्ट्रेस ज्यादा ही बढ़ता है, क्योंकि मोबाइल भी स्ट्रेस का रीजन हो सकता है। मतलब स्ट्रेस भगाने के लिए जो हम रास्ते पर जा रहे वो भी थोड़ा गलत है। और बस 17% बच्चे ही ग्राउंड पर जाते हैं, खेलते हैं, पसीना बहाते। तो ऐसा ही पूरा रिपोर्ट में आया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। इसी के साथ बच्चे अपना दुखड़ा किसको सुनाते हैं, तो उन 50% बच्चे अपने दोस्तों को दुखड़ा सुनाते हैं, यानी कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। एंड फैमिली के साथ 40-42% बच्चे अपना टेंशन शेयर करते हैं। और हर एक स्कूल में ना तो काउंसलर और थेरेपिस्ट है, तो उनके पास बस 5-6% बच्चे ही जाते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में ऐसा भी है, काउंसलर के पास जाना मतलब पागल समझते। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, इसको तो दूर करना ही पड़ेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पेरेंट्स और टीचर्स ने अपने बच्चों को सिर्फ नंबर के रेस में नहीं दौड़ाना चाहिए। 12वीं का रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, बट उनकी मुस्कान 8वीं के बाद से ही छिन जाती, तो वो मुस्कान गायब मत होने दीजिए, क्योंकि अगर बच्चों की मुस्कान ही छिन जाएगी तो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। और इस बारे में जरा पेरेंट्स ने भी और टीचर्स ने भी सोचना चाहिए। हम बच्चों को बस नंबर के रेस में दौड़ा रहे हैं या जिंदगी में सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सेल्फ एनालिसिस ये सभी को करना जरूरी है। सो स्टे ट्यून्ड
2: only on MGM 90.8 FM.

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrists, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष Hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन फाइव, छत्रपति संभाजी नगर.
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.

0: सख्त जरूरत है।
1: बचपन में हम सभी ने गाना सुना था ना कि बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया की आग के तारे। लेकिन ये गाना अब थोड़ा बदल चुका है, बच्चे स्ट्रेस के पक्के, भारी सिलेबस ने छुड़ा दिए छक्के। एक रिपोर्ट आई है, स्टूडेंट वेलबींग पल्स रिपोर्ट, जो कि हर साल आती है। और इस रिपोर्ट में इस साल थोड़ी चौंकाने वाली बात आई है। जैसे जैसे हमारे देश के बच्चे की क्लास बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस गायब हो जाती है। जी हाँ, मतलब बच्चा जब नर्सरी में होता है तो खिलखिलाता है, पहली क्लास में मुस्कुराता है, और आठवीं तक आते आते एकदम सीरियस हो जाता है, और बारहवीं तक पहुँचते पहुँचते तो वो भाई साक्षात देवदास बन जाता है पढ़ाई के मामले में। ये हमने भी देखा होगा। और रिपोर्ट के मुताबिक ना तो बच्चों के अंदर हैप्पीनेस लेवल एकदम कम हो चुका है, और छोटी सी उम्र में उन्हें टेंशन जैसी बीमारियां भी सहन करना पड़ रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी। सोचिए, हम बड़ा सोचते हैं कि असली स्ट्रेस तो ऑफिस के बॉस और ईएमआईज में है, लेकिन यहाँ 15 साल के बच्चे करियर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। देखो यार, एक वक्त था कि हमें इस बात का टेंशन होता था कि यार संडे को शक्तिमान का एपिसोड ना छूट जाए। उसी उम्र में आज के बच्चे मेंटल हेल्थ को लेकर गुजर रहे हैं। वैसे रिपोर्ट में क्या है, किस तरीके से और कैसे क्लास बढ़ने के बाद बच्चों का सुख चैन सब कुछ गायब हो जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन तब तक सोचिएगा यार कि पहले हमारा बचपन कितना खूबसूरत होता था, खुशहाली वाला होता था। और आज भी हमने नोटिस किया होगा कि हमारे बच्चे हो, मतलब मेरे तो नहीं है बट आपके बच्चे, सुबह उठते ही स्कूल जाते, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, फिर कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, और इस सब चक्करों में ना तो बच्चे खुश रहना ही भूल जाते हैं। तो इसीलिए इस इंडेक्स के मुताबिक इंडिया में जैसे जैसे क्लास बढ़ती है, वैसे वैसे बच्चों की मुस्कान कम हो जाती है। क्या कुछ है रिपोर्ट, पता चलेगा कुछ ही देर में। तब तक स्टे ट्यून्ड।

0: तो भाई चाय पीने के पहले थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही, चाहे फिर चाय शक्कर की हो या फिर गुड़ की हो। देखो यार, पहले महंगाई की डायन ने हम सभी को खा लिया था पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, उसके बाद यह आ चुकी है शक्कर और गुड़ के ऊपर अपना रंग जमाने के लिए। अब ऐसी खबर आई है कि पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सीधे 85 रुपए किलो, मतलब सिर्फ 21 दिनों में 25 रुपए की छलांग मारी है इस महंगाई ने, वो भी किसमें? गुड़ के मामले में। जी हाँ, इतनी तेज रफ्तार से ना सेंसेक्स भी ना तो ऊपर नीचे नहीं होता, जितनी तेज रफ्तार से यह महंगाई बढ़ रही है। और बस बात यहाँ पर गुड़ की नहीं भाई, शक्कर की भी है। यू नो व्हाट, शक्कर ना तो फिलहाल 70 और 72 रुपए किलो तक मिल रही है, आणि जी पीठी साखर असते ना त्याचे रेट पोहोचले आहेत 80 रुपए प्रति किलो। अब तक तो डॉक्टर ही कहते थे कि शक्कर मत खाओ, सेहत के लिए गुड़ खाओ। अब हमारा बैंक मैनेजर भी कह रहा होगा, भाई साहब गुड़ भी मत खाओ, बैंक बैलेंस के लिए सिर्फ हवा ही खाओ, क्योंकि गुड़ के भी दाम बढ़ गए, शक्कर के भी दाम बढ़ गए। अब आम आदमी करे तो करे क्या, सीधे कैंची उसके जेब पर चल चुकी है। वैसे एक बात तो यार, इस महंगाई की वजह से ना तो अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो त्योहारों में जो रिश्तेदार आते थे तो उनका मुंह मीठा करना थोड़ा कम कर सकते हैं हम। कोई आए तो सीधे कहो डाइट पर है भाई, ना मैं खाऊंगा मीठा, ना आपको मैं खाने दूंगा, चलिए फीकी चाय पीजिए और देश की इकोनॉमी बढ़ाइए और बचाइए। खैर जोक पार्ट, बट सीरियस प्रॉब्लम यही है कि आप मीठा इंसान खाए तो क्या खाए, या सभी लोग डाइट पर चले जाए, ना शक्कर के दाम कम है ना गुड़ के दाम कम है। मीठे के लिए अब बस एक ही चीज है, मीठी जुबान यूज करो, तभी लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। मिठाई के चक्कर में पड़ोगे बहुत खर्चा हो जाएगा भाई। खैर आप लोग टेंशन मत लीजिए, गुड़ चक्कर महंगी हो गए तो क्या हुआ, हमारी बातें तो मीठी है ना, वो तो मुफ्त में मिलेगी। तो अपनी बातों को मीठा बनाइए, मुस्कान की चमकान बरकरार रखिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैंगो मैन हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। होप सो सब कुछ ठीक हो जाए, कब होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। कीप मुस्कुराना, मीठी जुबान रखना एंड सुनते रहना।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology, so MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.
2: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खर, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा. स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर.
1: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
2: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल. स्वतंत्र दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
1: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
2: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार.

9209099991 Bid Bypass Road 9503109429 Trimurti Chowk 9699703562 Adi Chikaldhana 9765829991

0: Let's talk about mental health. Hello, you are listening to MGM 90.8 FM. और अपने साथ थे डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर, साइकेट्रिक्स। तो सर के साथ आज हम बात कर रहे हैं जो मिथ्स है ना मेंटल हेल्थ को लेकर, उसके बारे में जो समझ गैर समझ आए थे बदल। तो सर आप भी कई सालों से इस प्रोफेशन में हैं और आपने भी ऐसी चीजें नोटिस की होगी, कुछ मिथ्स है, कुछ स्टिग्मा है और एक टैबू भी है, लोगों के माइंड में अलग अलग सवाल आते, यार साइकेट्रिक्स के पास जाना मतलब मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं क्यों जाऊँ। तो ये ऐसे जो थॉट्स है लोगों के, ऐसे एक मिथ्स है, तो इस बारे में थोड़ा क्लियर कीजिएगा लोगों से।
1: सबसे पहले क्या है ना, साइकेट्री इलनेसेस वो सेम जैसे बाकी फिजिकल इलनेसेस उसी तरह से है। जैसे किसी को डायबिटीज होता है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होता है, उसी तरह से ये सारी चीजें होती है। ये किसी में भी हो सकता है, यानी साइकेट्री इलनेसेस वो ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर क्लास में ही होता है। हमेशा लाइफ में कभी ना कभी हर आदमी उस फेज से जाता है जहाँ पर हमें डिप्रेशन फील हो सकता है, एंजाइटी होती है, या निगेटिव इमोशंस आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं। जैसे बाकी बीमारियां है उसी तरह से है। और दूसरा, अगर आप इसका इलाज करते हैं तो ये ठीक भी हो सकता है, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। तो बहुत लोगों को इसके बारे में, साइकेट्री इलनेसेस के बारे में बहुत मिथ्स है। पर साइकेट्री इलनेसेस में सिर्फ एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं आता है। साइकेट्री इलनेसेस इज ए वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी नींद नहीं आना इज अ साइकोलॉजिकल इशू, सिंपल चीज है। ओवर थिंकिंग होना साइकोलॉजिकल इशू, स्ट्रेस हैंडल कर ना पाना इज अ साइकोलॉजिकल इशू। और ये हर चीज को टेक्निकल वे में अगर हम उसे मैनेज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, काउंसिलिंग हो या मेडिसिन हो, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। सो ये जो उसके बारे में जो मिथ है कि साइकेट्री इलनेसेस एक टाबू है सोसाइटी में भी, लोगों का देखने का नजरिया भी उसके लिए चेंज हो जाता है। और अगर कोई चीज़ उस व्यक्ति को हो रही है तो वो जानबूझ के तो नहीं होता करता है, उससे वो कहीं चीज़ हो रही है एंड उसके पीछे रीज़न क्या होता है। देखो क्या है, हम जो सोचते हैं, अपना रहन सहन है, अपना थॉट प्रोसेस है, हमारे मूड चेंजेस है, हमारा मूड किस तरह से रहता है या हमारा स्वभाव किस तरह से होता है, क्या होता है ना, ये अपने ब्रेन में कुछ केमिकल्स रहते हैं या अपन हार्मोन कहेंगे उसे, वो सब में है। वो हार्मोन का केमिकल में अगर उसमें या उस हार्मोन्स में दिमाग के अगर बदलाव आए, उस वजह से हमारे रहन सहन, सोचने के तरीके में और हमारे मूड्स में इस तरह से बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। अगर हम उस जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ है या उस हार्मोनल लेवल बढ़ चुका है या कम किया है, उसे अगर हम ठीक कर सकते हैं, प्राइमरी लेवल पे हम काउंसिलिंग से ठीक कर सकते हैं या स्ट्रेस अपन मेडिटेशन, रिलैक्सेशन ये सब प्रिवेंट भी कर सकते हैं हम उसे हेल्दी लाइफस्टाइल, और अगर हमें मेडिसिन की जरूरत पड़े तो मेडिसिन से भी हम ठीक कर सकते हैं, पर वो ठीक कर सकते हैं अगर आप सही समय पे डॉक्टर की हेल्प ले तो बिल्कुल इसका इलाज है। तो वो जस्ट साइकेट्री इलनेसेस आर लाइक अदर इलनेसेस, जैसे मेडिकल इलनेसेस होते हैं उसी तरह से होते हैं, उसका भी इलाज करके वो ठीक हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सन व्यक्ति अगर हमें विद इन टाइम अगर उसे ट्रीट करते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ।
0: तो ये सारी बातें याद रखिएगा और भी सर के साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे, बट एक ब्रेक के बाद, तब तक स्टे ट्यून्ड। Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड, 9503109429, त्रिमूर्ती चौक, 9699703562, आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: मेंटल हेल्थ को लेकर मिथ्स और कुछ समझ गए समझ बहुत सारे अपने सोसाइटी में हमें दिखाई देते हैं। तो इसी पर आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ है डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर। और सर एक ऐसे भी एक मिथ है यार, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ, मुझे थोड़ी ना कुछ मेंटल इलनेस हो सकती है। और ऐसे शख्स बिना तो बहुत सारे ऐसे मेंटल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन वो अवॉइड करते हैं हॉस्पिटल जाना, थेरेपी लेना। सो ये सो कॉल्ड हेल्दी पीपल्स को आप क्या कहोगे?
1: क्या है स्ट्रेस? स्ट्रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं ये पहले बताऊंगा कि स्ट्रेस ऐसा कोई नहीं है कि जिसे स्ट्रेस नहीं है। और स्ट्रेस है ना, थोड़ा बहुत हमेशा रहता है, बस उसका है ना क्या कहते हैं स्ट्रक्चर या स्वरूप चेंज होता है। जैसे आज मुझे पढ़ाई का स्ट्रेस है, कल मुझे कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड स्ट्रेस रहेगा, परसों मुझे करियर या फाइनेंशियल रहेगा या फैमिली से रिलेटेड होगा, बट दैट इज एन कॉन्स्टेंट प्रोसेस। सो डेफिनेटली अगर ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस है तो उससे रिलेटेड चीजें हमारे साथ होगी। अगर आप सही समय पे इसका हेल्प लेते हो तो आप उसे ठीक कर सकते। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में गलत चीजें पता है, लगता है उनको लगता है पहले कि नहीं साइकेट्रिस्ट अगर कोई दवाई देता है तो दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, ये पहला बहुत लोगों को लगता है। अभी दवाई को तो कैसा है, जैसे बाकी जो लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, उनकी जिस तरह से मेडिसिन होती है उसी तरह से मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन इसी तरह से होती है कि आपको हार्म ना करे अगर लॉन्ग टर्म लेना पड़े, और वो भी जरूरी नहीं कि आपको लॉन्ग टर्म लेना है। मैंने पहले ही कहा है कि वो टाइम सही समय पे अगर आप सही इलाज स्टार्ट कर सकते तो पहली बात तो मेडिसिन देना जरूरी है कि नहीं पता भी नहीं। अगर देना भी पड़े जल्दी, अगर आप उसको डायग्नोस हो जाता है उसे और जल्दी ट्रीट कर सकते हो, अगर कोई मेजर इलनेस भी रहा तो भी वो मेडिसिन वो उस पोर्शन को इमिजिएटली हम कंट्रोल करके वो मेडिसिन बन भी होती है। वो चीज कब होगी कि भाई मेडिसिन लेना ही पड़ता है, वो कब होता है कि जब चीज है आप कई सारा समय उसी में निकल गया कि आपने जल्दी इलाज नहीं किया, आपने अप्रोच नहीं हुए, आपने अपने खुद में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लाए, टाइम जाता है। टाइम जाने के बाद फिर तो वो चीज हार्म करेगी ना। वो तो सिर्फ सिंपल सादा बुखार भी है ना, कि सही समय पे सही इलाज करो तो आप ठीक लगेगा। सो पहला कि ये जो मेडिसिन लेना ही जरूरी है, मेडिसिन से किडनी जाती है, अनदर कॉन्सेप्ट बहुत लोगों का है, देखो वैसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, कोई भी मेडिसिन विद डॉक्टर्स गाइडेंस, उसकी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से भी डॉक्टर्स मेडिसिन देते, जिस तरह से बाकी इलनेसेस की मेडिसिन होती है उसी तरह से अपनी मेडिसिन रहती है।
0: तो ये सारी बातें याद रखिएगा, अपने मेंटल हेल्थ को वेल रखिएगा एंड सुनते रहिएगा।
2: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: IIM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrists, इनके guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर.
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
4: For admission, contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
2: Buy one, get one free. Hoy hoy, khara, ek gyan, ek free milwa. Swatantra dinacha khas nimittane Dwargada Shyam Kumar ghiun aale aaye shandar offers.
4: Banarasi satin sari, printed dola sari, designer sari, zamdani silk, kimaya cotton, kiwa ladies dress. Tumchi favorite sari, buy one, get one free.
2: Manje style hi double ani shopping cha anand hi double. Swatantra din sajra kara नव्या शॉपिंग सोबत.
4: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, दात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
2: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.

0: வெல்கம் டு MGM 90.8 FM. और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट मेंटल हेल्थ और उसके मिथ्स को लेकर, समझ गैर समझ को लेकर. हमारे साथ है डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर.
1: लोग ना तो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेने से क्यों हमेशा कतराते हैं, हेजिटेट करते हैं?
2: पहला जो सोशल स्टिग्मा ही बहुत है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में अभी भी साइकेट्री पेशेंट्स का एक्सेप्टेंस कम है. उनको लगता है कि मेरे ऊपर एक धब्बा बैठ जाएगा कि या लोगों का परसेप्शन मेरे बारे में देखने का चेंज हो जाएगा, इसलिए अभी भी लोग कतराते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए. और मैंने जैसे बोला कि आपका जिस वक्त पे आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप उस चीज को जल्दी हेल्प नहीं लोगे, छोटी सी चीज भी फिर बहुत बढ़ जाती है. और फिर बाद में है ना, अल्टीमेटली क्या होता है ना कि साइकेट्री इलनेसेस बढ़ जाए, अगर कोई भी बीमारी बढ़ जाती है तो आपका पर्सनल फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, आपका इवन करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, हर चीजें पे यहाँ पे आपको दिक्कत आने लगती है. तो वो देर के बजाय आप जल्द से जल्द अगर आप चाहते हो, इलाज स्टार्ट करते हो, मेडिसिन भी अगर लेनी पड़ी तो बिल्कुल आप ले लीजिए, बट उसे नजरअंदाज मत करिए, उसे अवॉइड मत करिए. और क्या है ना कि जैसे मैंने कहा है कि बाकी भी चीजें जैसे साइकेट्री, जैसे फिजिकल इलनेस से, उसी तरह से ये साइकेट्री इलनेस से, बट आप सही समय पे, कोई उसके बारे में सोशल टैबू नहीं है. हमारे कई सारे पेशेंट्स इस तरह से है कि जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी दे आर ऑन सिंगल मेडिसिन, मगर चल भी रही है कोई सीरियस इलनेसेस के लिए तो भी चल रही है. और दूसरा मैं कहूंगा कि एक्चुअली और एक चीज होती है ना, जैसे अभी मैंने कहा कि स्ट्रेस है, और एक दूर लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस आया तो वो रादर दे टेक हेल्प ऑफ सम एडिक्शन, वो अल्कोहल स्टार्ट करेंगे या कोई दूसरा नशा करेंगे, हालांकि उससे बीमारी और बढ़ती है, वो सोल्यूशन नहीं है ना, उससे और बीमारी बढ़ेगी. रादर देन गोइंग टू दैट स्टेज, आप एडिक्शन का और बाकी चीजों का आप उससे हेल्प लेने के बजाय अगर आप डॉक्टर से बात करते हो, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, तो आप आपका लाइफ हैप्पी कर सकते हो. और साइकेट्री का क्या है, अगर आप मेंटली फिट नहीं हो ना, वो आपको फिजिकली भी हार्म करेगा, को आपके करियर के ऊपर असर करेगा, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी. कितनी चीजें देखते हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, इस वजह से डिवोर्स हुआ है या रिलेशनशिप नहीं टिक पा रहा है, या हमेशा जॉब की जगह पे जाते हैं तो वहां पर किसी के साथ जमता नहीं है, वहां हर किसी के साथ झगड़ा होता है, या फिर आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, आपका अंडर परफॉर्मेंस है, आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप हमेशा थॉट्स में हो, निगेटिविटी है, अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होता, आप इंटरव्यू भी नहीं प्रॉपर दे पाओगे वहां पर भी, इससे अच्छा टेक हेल्प, पहले आप जल्द से जल्द ठीक हो एंड फिर आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, नॉर्मल लाइफ जी सकते.
0: तो ये सारी बातें याद रखिए, सर के साथ हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे इसी टॉपिक पर, बट एक ब्रेक के बाद, तब तक स्टे ट्यून्ड.
3: ओनली ऑन MGM 90.8 FM.

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजी नगर
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।
2: प्लीज प्लीज यार, फोन तो मत काट, मानता हूँ हो गई गलती, अब मान भी जा।

0: Hello, hi, namaskar and welcome back. You are listening MTM 90.8 FM. एंड हमारे साथ थे डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर, साइकेट्रिक्स, और आज बात कर रहे हैं हम मेंटल हेल्थ को लेकर, जो मिथ्स, जो टैबू है उस सिलसिले में.
1: वन लास्ट क्वेश्चन सर, कि मेंटल हेल्थ को लेकर जो सोसाइटी में मिथ्स है और जो अलग अलग सोच है लोगों की, तो उस बारे में लोगों को मैसेज दोगे अबाउट वो मिथ्स दूर करने के लिए?
2: मैं ये पहला ये कहूँगा कि देखो, जो हमारे दिमाग में जो ब्रेन के केमिकल्स है उनमें अगर बदलाव हुआ तो इस वजह से हमारे रहन सहन, अपने थिंकिंग, सोच और अपने बिहेवियर और पर्सनैलिटी में फर्क होता है. तो ये साइंस है. अगर हम उस केमिकल या दिमाग के जो हार्मोन है उसे अगर हम नॉर्मल करते हैं तो आपके सब चीज़ें रहन सहन में हर में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. तो बहुत बार क्या होता है कि अभी अपने में पहला मैंने जैसे कहा है कि अगर समझो कोई मेजर एबनॉर्मल बिहेवियर कोई अगर कोई पर्सन कर रहा है या कोई व्यक्ति, तो पहला तो देखो अपने दिमाग में अभी भी कई सारे जगह में उनको लगता है कि नहीं, ये तो इसको कोई उसके पीछे कोई भूत लग गया है या कोई पिशाच लग गया है या किसी ने कुछ उसको कोई ब्लैक मैजिक किया, इस तरह से कभी अभी भी सोचते हैं. बट ये साइंस है. कितने सारे उसमें क्या होता है, फिर ये लोग वहाँ पहले जाते हैं, वो सब चीज़ करते हैं, उससे पेशेंट और डिटोरिएट होता है. जो क्रूशियल टाइम था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का, वो निकल जाता है. अल्टीमेटली वो आते हैं फिर लास्ट में आते हैं डॉक्टर के पास, पर तब तक देर हो जाती है. तो मैं कहा हूँ कि आप ये चीज़ों को मत करो, ये साइंस है, इसे ठीक कर सकते हो. अगर आप आते हो डॉक्टर के पास आप करिए. हाँ, आपकी श्रद्धा रहनी चाहिए, आप किसी चीज़ को मानते हो भगवान को, आप बिल्कुल करिए, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है भगवान का चीज़ें करके, पर ट्रीटमेंट नहीं छोड़िए. दूसरा टाबू पर से मैंने ये कहा कि भाई मेडिसिन एक बार स्टार्ट होती है तो वो चलती ही रहती है लाइफ टाइम. ये एक जो दूसरा मिथ है, देखो मैंने पे ही कहा है कि अगर आप इमीडिएटली डायग्नोज हो जाता है कोई चीज़, इमीडिएटली आप ट्रीटमेंट लेते हो, तो शायद एड मेडिसिन बंद भी कर सकते हैं ना, क्योंकि वो आपका टेम्परेरी फेज होता है. उस फेज अगर मैं मैनेज करता हूँ धीरे धीरे करके, मेडिसिन कम की जाती है विद डॉक्टर्स गाइडेंस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन, पहले तो आपको खुद को वर्क करना होगा इसी चीज़ में कि ये ना ही हो. तो पॉजिटिव हेल्दी लाइफ आप करिए, को स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए जो कि आप में पॉजिटिव हार्मोन क्रिएट करेगा ब्रेन में. आप अच्छा डाइट लीजिए सो आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा. फ्रीक्वेंट और हेल्दी

हर शहर की ना तो अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है, और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का। हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे सिर्फ पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, भड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छुड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जाने, उनकी अहमियत समझे और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाए, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है, और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मेरी और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपनी धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरा गाँव मेरी धरोहर। स्टे ट्यून All is well with RJ Adnan.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
1: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनके guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर.
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
4: For admission, contact 93717142 65 or visit www.mgmu.ac.in.
2: Buy one, get one free. Hoy hoy, khara, ek gyan, ek free milwa. Swatantra dinacha khas nimittane Dwargada Shyam Kumar ghiun aale aaye shandar offers.
4: Banarasi satin sari, printed dola sari, designer sari, zamdani silk, kimaya cotton, kiwa ladies dress. Tumchi favorite sari, buy one, get one free.
2: Manje style hi double ani shopping cha anand hi double. Swatantra din sajra करा नव्या शॉपिंग सोबत.
4: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, दात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
2: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.

0: हाँ जी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया।
1: All is well. RJ and Ananka morning show. Freshness live radio ka flow.
0: On MGM 90.8 FM. RJ Adnan आपके साथ है on MGM 90.8 FM. बड़ा वक्त हो चुका है मेरा था कहने का, यानी कि RJ Adnan आपके साथ था, टाप टाटा बाय बाय कर रहा है, मैं तो चला अब अपनी गली। आज का शो आपको कैसा लगा? आई होप कि पसंद आया होगा, तो आपका फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा DM कीजिए का इंस्टा पर RJ Adnan इस इंस्टा पेज पर, या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9359320080। इस नंबर पर आपका फीडबैक बहुत जरूरी है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कीजिएगा, फॉलोअर्स भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बाकी तो अपना ख्याल रखिएगा, आराम से गाड़ी चलाइए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए सुनते रहिए MGM 90.8 FM। मिलते हैं अगले अपने शो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खर, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
3: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
2: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल। स्वतंत्र दिन करा नव्या शॉपिंग सोबत।
3: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
4: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।
5: Wondering what's next?
6: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
5: where innovation meets excellence. Admissions are open
6: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
5: across diverse fields from engineering and AI to law.
6: Apply now at www.mgmu.ac.in
5: or call 9067612000.

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

लता जी लोग कहते हैं भी तुम्हें इतना मानती हैं, लता जी तुम्हें उस्ताद समझती हैं, तुम्हें प्यार करती, ये सब मैं समझती हूँ उनका बड़ापन है ना। लता तो लता है, लता जी की तरह मेरी नज़र में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। लता जी को अल्लाह ने आवाज़ दी है, इन मुल्क को उनके वालिद साहब से मिला, खुदा की तरफ से उन पर करम।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनकी guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष Hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.
2: बाय वन गेट वन फ्री होय होय खरं एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर.
1: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
2: म्हणजे स्टाईलही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
1: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
2: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ति चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खर, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.
2: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खर, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
1: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
2: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत
1: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, दात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
2: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765829991।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर्स।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड, 9503109429, त्रिमूर्ती चौक, 9699703562, आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: IIM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होमियोपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: Admission contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
5: Buy one get one free. Hoy hoy khara, ek gyan ek free milwa. Swatantra dinacha khas nimittane Dwarkadas Shyam Kumar ghun aale aaye shandar offers.
4: Banarasi satin sari, printed dola sari, designer sari, zamdani silk kimaya cotton kiwa ladies dress. Tumchi favorite sari buy one get one free.
5: Manje style hi double ani shopping cha anand hi double. Swatantra din sajra kara nagar शॉपिंग सोबत।
4: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
5: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

बचपन में हम सभी ने गाना सुना था ना कि बच्चे मन के सच्चे सारी दुनिया की आग के तारे, लेकिन ये गाना अब थोड़ा बदल चुका है। बच्चे स्ट्रेस के पक्के, भारी सिलेबस ने छुड़ा दिए छक्के। एक रिपोर्ट आई है, स्टूडेंट वेलबींग पल्स रिपोर्ट, जो कि हर साल आती है, और इस रिपोर्ट में इस साल थोड़ी चौंकाने वाली बात आई है। जैसे जैसे हमारे देश के बच्चे की क्लास बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस गायब हो जाती है। जी हाँ, मतलब बच्चा जब नर्सरी में होता है तो खिलखिलाता है, पहली क्लास में मुस्कुराता है, और आठवीं तक आते आते एकदम सीरियस हो जाता है, और बारहवीं तक पहुँचते पहुँचते तो वो भाई साक्षात देवदास बन जाता है पढ़ाई के मामले में। ये हमने भी देखा होगा, और रिपोर्ट के मुताबिक ना तो बच्चों के अंदर हैप्पीनेस लेवल एकदम कम हो चुका है, और छोटी सी उम्र में उन्हें टेंशन जैसी बीमारियां भी सहन करना पड़ रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी। सोचिए, हम बड़ा सोचते हैं कि असली स्ट्रेस तो ऑफिस के बॉस और ईएमआईज में है, लेकिन यहाँ 15 साल के बच्चे करियर क्राइसिस से गुजर रहे हैं। देखो यार, एक वक्त था कि हमें इस बात का टेंशन होता था कि यार संडे को शक्तिमान का एपिसोड ना छूट जाए, उसी उम्र में आज के बच्चे मेंटल हेल्थ को लेकर गुजर रहे हैं। वैसे रिपोर्ट में क्या है, किस तरीके से और कैसे क्लास बढ़ने के बाद बच्चों का सुख चैन सब कुछ गायब हो जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन तब तक सोचिएगा यार कि पहले हमारा बचपन कितना खूबसूरत होता था, खुशहाली वाला होता था, और आज भी हमने नोटिस किया होगा कि हमारे बच्चे हो, मतलब मेरे तो नहीं है बट आपके बच्चे सुबह उठते ही स्कूल जाते, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, फिर कुछ और एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, और इस सब चक्करों में ना तो बच्चे खुश रहना ही भूल जाते हैं। तो इसीलिए इस इंडेक्स के मुताबिक इंडिया में जैसे जैसे क्लास बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों की मुस्कान कम हो जाती है। क्या कुछ है रिपोर्ट, पता चलेगा कुछ ही देर में। तब तक स्टे ट्यून्ड।

0: your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology, so MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTEC, MTEC, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: Wondering what's next?
4: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
3: where innovation meets excellence. Admissions are open
4: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
3: across diverse fields from engineering and AI to law.
4: Apply now at www.mgmu.ac.in
3: or call 9067612000.
2: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादा श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर.
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
2: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत
5: द्वारकादा श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
2: ही ऑफर 9-17 August 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.

0: बात है उस स्कूल बैग की जिसमें किताबों से ज्यादा टेंशन भरी पड़ी है, आज के वक्त में हमने देखा भी होगा। तो भाई साहब, एक ऐसा सर्वे हुआ था जिस सर्वे के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें पता चला है कि बच्चों का हैप्पीनेस इंडेक्स एकदम कम हो चुका है। इस सर्वे में तकरीबन 8000 से ज्यादा बच्चे थे और डेटा कहता है कि 8वीं क्लास में उनमें से 65% बच्चे खुश थे, लेकिन जैसे ही वो 12वीं तक पहुंचते हैं तो खुशी का लेवल गिरकर सीधे 48% हो जाता है। मतलब 17% खुशियां रास्ता बदल देती है करियर और कॉम्पिटिशन को लेकर। ये बच्चों में स्ट्रेस सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं कि कॉन्फिडेंस की बात करें तो लड़कियों में सेल्फ कॉन्फिडेंस तकरीबन 52% बचा है, जबकि लड़कों में 64% है। और स्ट्रेस से निपटने के लिए हमारे देश के होनहार बच्चे क्या करते हैं, उन 70% बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, गाने सुनते हैं। मतलब स्ट्रेस ज्यादा ही बढ़ता है, क्योंकि मोबाइल भी स्ट्रेस का रीजन हो सकता है। मतलब स्ट्रेस भगाने के लिए जो हम रास्ते पर जा रहे वो भी थोड़ा गलत है। और बस 17% बच्चे ही ग्राउंड पर जाते हैं, खेलते हैं, पसीना बहाते हैं। तो ऐसा ही पूरा रिपोर्ट में आया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। इसी के साथ बच्चे अपना दुखड़ा किसको सुनाते हैं, तो उन 50% बच्चे अपने दोस्तों को दुखड़ा सुनाते हैं, यानी कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। एंड फैमिली के साथ 40-42% बच्चे अपना टेंशन शेयर करते हैं। और हर एक स्कूल में ना तो काउंसलर और थेरेपिस्ट है, तो उनके पास बस 5-6% बच्चे ही जाते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में ऐसा भी है काउंसलर के पास जाना मतलब पागल समझते। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, इसको तो दूर करना ही पड़ेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पेरेंट्स और टीचर्स ने अपने बच्चों को सिर्फ नंबर के रेस में नहीं दौड़ाना चाहिए। 12वीं का रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, बट उनकी मुस्कान 8वीं के बाद से ही छिन जाती, तो वो मुस्कान गायब मत होने दीजिए, क्योंकि अगर बच्चों की मुस्कान ही छिन जाएगी तो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। और इस बारे में जरा पेरेंट्स ने भी और टीचर्स ने भी सोचना चाहिए। हम बच्चों को बस नंबर के रेस में दौड़ा रहे हैं या जिंदगी में सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सेल्फ एनालिसिस ये सभी को करना जरूरी है। सो स्टे ट्यून्ड
1: only on MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खर, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: तो भाई चाय पीने के पहले थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ही, चाहे फिर चाय शक्कर की हो या फिर गुड़ की हो। देखो यार, पहले महंगाई की डायन ने हम सभी को खा लिया था पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, उसके बाद यह आ चुकी है शक्कर और गुड़ के ऊपर अपना रंग जमाने के लिए। अब ऐसी खबर आई है कि पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, सीधे 85 रुपए किलो, मतलब सिर्फ 21 दिनों में 25 रुपए की छलांग मारी है इस महंगाई ने, वो भी किसमें? गुड़ के मामले में। जी हाँ, इतनी तेज रफ्तार से ना सेंसेक्स भी ना तो ऊपर नीचे नहीं होता, जितनी तेज रफ्तार से ये महंगाई बढ़ रही है। और बस बात यहाँ पर गुड़ की नहीं भाई, शक्कर की भी है। यू नो व्हाट, शक्कर ना तो फिलहाल 70 और 72 रुपए किलो तक मिल रही है, आणि जी पीठी साखर असते ना त्याचे रेट पोहोचले आहेत 80 रुपए प्रति किलो। अब तक तो डॉक्टर ही कहते थे कि शक्कर मत खाओ, सेहत के लिए गुड़ खाओ। अब हमारा बैंक मैनेजर भी कह रहा होगा, भाई साहब गुड़ भी मत खाओ, बैंक बैलेंस के लिए सिर्फ हवा ही खाओ, क्योंकि गुड़ के भी दाम बढ़ गए, शक्कर के भी दाम बढ़ गए। अब आम आदमी करे तो करे क्या, सीधे कैंची उसके जेब पर चल चुकी है। वैसे एक बात तो यार, इस महंगाई की वजह से ना तो अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो त्योहारों में जो रिश्तेदार आते थे तो उनका मुंह मीठा करना थोड़ा कम कर सकते हैं हम। कोई आए तो सीधे कहो डाइट पर है भाई, ना मैं खाऊंगा मीठा, ना आपको मैं खाने दूंगा, चलिए फीकी चाय पीजिए और देश की इकोनॉमी बढ़ाइए और बचाइए। खैर जोक पार्ट, बट सीरियस प्रॉब्लम यही है कि आप मीठा इंसान खाए तो क्या खाए, या सभी लोग डाइट पर चले जाए, ना शक्कर के दाम कम है ना गुड़ के दाम कम है। मीठे के लिए अब बस एक ही चीज है, मीठी जुबान यूज करो, तभी लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। मिठाई के चक्कर में पड़ोगे बहुत खर्चा हो जाएगा भाई। खैर आप लोग टेंशन मत लीजिए, गुड़ शक्कर महंगी हो गए तो क्या हुआ, हमारी बातें तो मीठी है ना, वो तो मुफ्त में मिलेगी। तो अपनी बातों को मीठा बनाइए, मुस्कान की चमकान बरकरार रखिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैंगो मैन हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। होप सो सब कुछ ठीक हो जाए, कब होगा ये तो मुझे भी नहीं पता है। कीप मुस्कुराना, मीठी जुबान रखना एंड सुनते रहना।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: gmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
3: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
2: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
3: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
2: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in।

0: हर शहर की ना तो अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है, और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का। हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे सिर्फ पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, भड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जाने, उनकी अहमियत समझे और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाए, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है, और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मेरी और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपनी धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरा गाँव मेरी धरोहर। स्टे ट्यून
1: All is well with RJ Adnan.

0: Let's talk about mental health. Hello, you are listening MGM 90.8 FM. और अपने साथ थे डॉक्टर अमोल पाथरीकर सर, साइकेट्रिक्स। तो सर के साथ आज हम बात कर रहे हैं जो मिथ्स है ना मेंटल हेल्थ को लेकर, उसके बारे में जो समझ गैर समझ आए थे बदल। तो सर आप भी कई सालों से इस प्रोफेशन में हैं और आपने भी ऐसी चीज़ें नोटिस की होगी, कुछ मिथ्स है, कुछ स्टिग्मा है और एक टैबू भी है, लोगों के माइंड में अलग अलग सवाल आते हैं यार साइकेट्रिक्स के पास जाना मतलब मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं क्यों जाऊँ। तो ये ऐसे जो थॉट्स है लोगों के, ऐसे एक मिथ्स है, तो इस बारे में थोड़ा क्लियर कीजिएगा लोगों से।
1: सबसे पहले क्या है ना, साइकेट्री इलनेसेस वो सेम जैसे बाकी फिजिकल इलनेसेस उसी तरह से है। जैसे किसी को डायबिटीज होता है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होता है, उसी तरह से ये सारी चीज़ें होती है। ये किसी में भी हो सकता है, यानी साइकेट्री इलनेसेस वो ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर क्लास में ही होता है। हमेशा लाइफ में कभी ना कभी हर आदमी उस फेज से जाता है जहाँ पर हमें डिप्रेशन फील हो सकता है, एंजाइटी होती है या निगेटिव इमोशंस आते हैं, निगेटिव थाट्स आते हैं। जैसे बाकी बीमारियाँ है उसी तरह से है। और दूसरा, अगर आप इसका इलाज करते हैं तो ये ठीक भी हो सकता है, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। तो बहुत लोगों को इसके बारे में, साइकेट्री इलनेसेस के बारे में बहुत मिथ्स है। पर साइकेट्री इलनेसेस में सिर्फ एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं आता है। साइकेट्री इलनेसेस इज ए वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, यानी नींद नहीं आना इज ए साइकोलॉजिकल इशू, सिंपल चीज है। ओवर थिंकिंग होना साइकोलॉजिकल इशू, स्ट्रेस हैंडल कर ना पाना इज ए साइकोलॉजिकल इशू। और ये हर चीज को टेक्निकल वे में अगर हम उसे मैनेज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, काउंसिलिंग हो या मेडिसिन हो, तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। सो ये जो उसके बारे में जो मिथ है कि साइकेट्री इलनेसेस एक टाबू है सोसाइटी में भी, लोगों का देखने का नजरिया भी उसके लिए चेंज हो जाता है। और अगर कोई चीज़ उस व्यक्ति को हो रही है तो वो जानबूझ के तो नहीं हो करता है, उससे वो कहीं चीज़ हो रही है। एंड उसके पीछे रीज़न क्या होता है, देखो क्या है, हम जो सोचते हैं, अपना रहन सहन है, अपना थॉट प्रोसेस है, हमारे मूड चेंजेस है, हमारा मूड किस तरह से रहता है या हमारा स्वभाव किस तरह से होता है, क्या होता है ना, ये अपने ब्रेन में कुछ केमिकल्स रहते हैं या अपन हार्मोन कहेंगे उसे, वो सब में है। वो हार्मोन का केमिकल में अगर उसमें या उस हार्मोन्स में दिमाग के अगर बदलाव आए, उस वजह से हमारे रहन सहन, सोचने के तरीके में और हमारे मूड्स में इस तरह से बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। अगर हम उस जो केमिकल इम्बैलेंस हुआ है या उस हार्मोनल लेवल बढ़ चुका है या कम किया है, उसे अगर हम ठीक कर सकते हैं, प्राइमरी लेवल पे हम काउंसिलिंग से ठीक कर सकते हैं या स्ट्रेस अपन मेडिटेशन रिलैक्सेशन ये सब प्रिवेंट भी कर सकते हैं, हम उसे हेल्दी लाइफ स्टाइल, और अगर हमें मेडिसिन की जरूरत पड़े तो मेडिसिन से भी हम ठीक कर सकते हैं, पर वो ठीक कर सकते हैं। अगर आप सही समय पे डॉक्टर की हेल्प ले तो बिल्कुल इसका इलाज है। तो वो जस्ट साइकेट्रिक इलनेसेस आर लाइक अदर इलनेसेस, जैसे मेडिकल इलनेसेस होते हैं उसी तरह से होते हैं, उसका भी इलाज करके वो ठीक हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सन व्यक्ति अगर हमें विद इन टाइम अगर उसे ट्रीट करते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीता है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ।
0: तो ये सारी बातें याद रखिएगा और भी सर के साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे, बट एक ब्रेक के बाद, तब तक स्टे ट्यून्ड।
2: Only on MGM 90.8 FM.

0: मेंटल हेल्थ को लेकर मिथ्स और कुछ समझ गए समझ बहुत सारे अपने सोसाइटी में हमें दिखाई देते हैं। तो इसी पर आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ है डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर। और सर एक ऐसे भी एक मिथ है यार, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ, मुझे थोड़ी ना कुछ मेंटल इलनेस हो सकती है। और ऐसे शख्स बिना तो बहुत सारे ऐसे मेंटल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन वो अवॉइड करते हैं हॉस्पिटल जाना, थेरेपी लेना। सो ये सो कॉल्ड हेल्दी पीपल्स को आप क्या कहोगे?
1: क्या स्ट्रेस? स्ट्रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं ये पहले बताऊंगा कि स्ट्रेस ऐसा कोई नहीं है कि जिसे स्ट्रेस नहीं है। और स्ट्रेस है ना, थोड़ा बहुत हमेशा रहता है, बस उसका है ना क्या कहते हैं स्ट्रक्चर या स्वरूप चेंज होता है। जैसे आज मुझे पढ़ाई का स्ट्रेस है, कल मुझे कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड स्ट्रेस रहेगा, परसों मुझे करियर या फाइनेंशियल रहेगा या फैमिली से रिलेटेड होगा, बट दैट इज एन कॉन्स्टेंट प्रोसेस। सो डेफिनेटली अगर ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस है तो उससे रिलेटेड चीजें हमारे साथ होगी। अगर आप सही समय पे इसका हेल्प लेते हो तो आप उसे ठीक कर सकते। बहुत सारे लोगों को उसके बारे में गलत चीजें पता है, लगता है उनको लगता है पहले कि नहीं साइकेट्रिस्ट अगर कोई दवाई देता है तो दवाई के साइड इफेक्ट होते, ये पहला बहुत लोगों को लगता है। अभी दवाई को तो कैसा है, जैसे बाकी जो लॉन्ग टर्म बीमारियां हैं कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, उनकी जिस तरह से मेडिसिन होती है उसी तरह से मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन इसी तरह से होती है कि आपको हम ना करें अगर लॉन्ग टर्म लेना पड़े, और वो भी जरूरी नहीं कि आपको लॉन्ग टर्म लेना है। मैंने पहले ही कहा है कि वो टाइम सही समय पे अगर आप सही इलाज स्टार्ट कर सकते तो पहली बात तो मेडिसिन देना जरूरी है कि नहीं पता भी नहीं। अगर देना भी पड़े जल्दी, अगर आप उसको डायग्नोस हो जाता है उसे और जल्दी ट्रीट कर सकते हो, अगर कोई मेजर इलनेस भी रहा तो भी वो मेडिसिन वो उस पोर्शन को इमीडिएटली हम कंट्रोल करके वो मेडिसिन बन भी होती है। वो चीज

0: कब होगी कि कि भाई मेडिसिन लेना ही पड़ता है, वो कब होता है कि जब चीज है आप कई सारा समय उसी में निकल गया कि आपने जल्दी इलाज नहीं किया, आपने अप्रोच नहीं हुए, आपने अपने खुद में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लाए, टाइम जाता है, टाइम जाने के बाद फिर तो वो चीज हार्म करेगी ना। वो तो सिर्फ सिंपल सादा बुखार भी है ना कि सही समय पे सही इलाज करो तो आप ठीक लगेगा। सो पहला कि ये जो मेडिसिन लेना ही जरूरी है, मेडिसिन से किडनी जाती है, अनदर कॉन्सेप्ट बहुत लोगों का है, देखो वैसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, कोई भी मेडिसिन विद डॉक्टर्स गाइडेंस, उसकी फिजिकल कंडीशन से हिसाब से भी डॉक्टर्स मेडिसिन देते, जिस तरह से बाकी इलनेसेस की मेडिसिन होती है उसी तरह से अपनी मेडिसिन रहती है।
1: तो ये सारी बातें याद रखिएगा, अपने मेंटल हेल्थ को वेल रखिएगा एंड सुनते रहिएगा।
2: Only on MGM 90.8 FM.

0: Welcome to MGM 90.8 FM. और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट मेंटल हेल्थ और उसके मिथ्स को लेकर, समझ गैर समझ को लेकर। हमारे साथ है डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर।
1: लोग ना तो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेने से क्यों हमेशा कतराते हैं, हेजिटेट करते हैं?
2: पहला जो सोशल स्टिग्मा ही बहुत है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में अभी भी साइकेट्री पेशेंट्स का एक्सेप्टेंस कम है। उनको लगता है कि मेरे ऊपर एक धब्बा बैठ जाएगा कि या लोगों का परसेप्शन मेरे बारे में देखने का चेंज हो जाएगा, इसलिए अभी भी लोग कतराते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए। पर मैंने जैसे बोला कि आपका जिस वक्त पे आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप उस चीज को जल्दी हेल्प नहीं लोगे, छोटी सी चीज भी फिर बहुत बढ़ जाती है। और फिर बाद में है ना, अल्टीमेटली क्या होता है ना कि साइकेट्री इलनेसेस बढ़ जाए, अगर कोई भी बीमारी बढ़ जाती है तो आपका पर्सनल फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, आपका इवन करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, हर चीजें पे यहाँ पे आपको दिक्कत आने लगती है। तो वो देर के बजाय आप जल्द से जल्द अगर आप चाहते हो इलाज स्टार्ट करते हो, मेडिसिन भी अगर लेनी पड़ी तो बिल्कुल आप ले लीजिए, बट उसे नजरअंदाज मत करिए, उसे अवॉइड मत करिए। और क्या है ना कि जैसे मैंने कहा है कि बाकी भी चीजें जैसे साइकेट्री, जैसे फिजिकल इलनेस से उसी तरह से ये साइकेट्री इलनेस से, बट आप सही समय पे, कोई उसके बारे में सोशल टैबू नहीं है। हमारे कई सारे पेशेंट्स इस तरह से है कि जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, यानी दे आर ऑन सिंगल मेडिसिन, मगर चल भी रही है कोई सीरियस इलनेसेस के लिए तो वो भी चल रही है। और दूसरा मैं कहूंगा कि एक्चुअली और एक चीज होती है ना, जैसे अभी मैंने कहा कि स्ट्रेस है, और एक दूर लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेस आया तो वो रादर दे टेक हेल्प ऑफ सम एडिक्शन, वो अल्कोहल स्टार्ट करेंगे या कोई दूसरा नशा करेंगे, हालांकि उससे बीमारी और बढ़ती है, वो सॉल्यूशन नहीं है ना, उससे और बीमारी बढ़ गई। रादर देन गोइंग टू दैट स्टेज, आप एडिक्शन का और बाकी चीजों का

0: आप उससे हेल्प लेने के बजाय अगर आप डॉक्टर से बात करते हो, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, तो आप आपका लाइफ हैप्पी कर सकते हो। और साइकेट्री का क्या है, अगर आप मेंटली फिट नहीं हो ना, वो आपको फिजिकली भी हार्म करेगा, को आपके करियर के ऊपर असर करेगा, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी। कितनी चीजें देखते हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, इस वजह से डिवोर्स हुआ है या रिलेशनशिप नहीं टिक पा रहा है, या हमेशा जॉब की जगह पे जाते हैं तो वहां पर किसी के साथ जमता नहीं है, वहां खार किसी के साथ झगड़ा होता है, या फिर आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, आपका अंडर परफॉर्मेंसर है, आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आप हमेशा थॉट्स में हो, निगेटिविटी है, अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होता, आप इंटरव्यू भी नहीं प्रॉपर दे पाओगे वहां पर भी। इससे अच्छा टेक हेल्प, पहले आप जल्द से जल्द ठीक हो एंड फिर आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, नॉर्मल लाइफ जी सकते।
1: तो ये सारी बातें याद रखिए, सर के साथ हम और भी ढेर सारी बातें करेंगे इसी टॉपिक पर, बट एक ब्रेक के बाद, तब तक स्टे ट्यून्ड।
2: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക്. യു ആർ ലിസണിംഗ് MGM 90.8 FM एंड हमारे साथ थे डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर, साइकेट्रिक्स, और आज बात कर रहे हैं हम मेंटल हेल्थ को लेकर जो मिथ्स, जो टैबू है उस सिलसिले में.
1: वन लास्ट क्वेश्चन सर कि मेंटल हेल्थ को लेकर जो सोसाइटी में मिथ्स है और जो अलग अलग सोच है लोगों की, तो उस बारे में लोगों को मैसेज दोगे अबाउट वो मिथ्स दूर करने के लिए?
2: मैं ये पहला ये कहूँगा कि देखो, जो हमारे दिमाग में जो ब्रेन के केमिकल्स है उनमें अगर बदलाव हुआ तो इस वजह से हमारे रहन सहन, अपने थिंकिंग, सोच और अपने बिहेवियर और पर्सनैलिटी में फर्क होता है. तो ये साइंस है. अगर हम उस केमिकल या दिमाग के जो हार्मोन है उसे अगर हम नॉर्मल करते हैं तो आपके सब चीजें रहन सहन में हर में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. तो बहुत बार क्या होता है कि अभी अपने में पहला मैंने जैसे कहा है कि अगर समझो कोई मेजर एबनॉर्मल बिहेवियर कोई अगर कोई पर्सन कर रहा है या कोई व्यक्ति, तो पहला तो देखो अपने दिमाग में अभी भी कई सारे जगह में उनको लगता है कि नहीं, ये तो इसको कोई उसके पीछे कोई भूत लग गया है या कोई पिशाच लग गया है या किसी ने कुछ उसको कोई ब्लैक मैजिक किया, इस तरह से कभी अभी भी सोचते हैं. बट ये साइंस है. कितने सारे उसमें क्या होता है, फिर ये लोग वहां पहले जाते हैं, वो सब चीज करते हैं, उससे पेशेंट और डिटोरिएट होता है. जो क्रूशियल टाइम था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का, वो निकल जाता है. अल्टीमेटली वो आते हैं फिर लास्ट में आते हैं डॉक्टर के पास, पर तब तक देर हो जाती है. तो मैं कहा हूं कि आप ये चीजों को मत करो, ये साइंस है, इसे ठीक कर सकते हो. अगर आप आते हो डॉक्टर के पास आप करिए. हाँ, आपकी श्रद्धा रहनी चाहिए, आप किसी चीज को मानते हो भगवान को, आप बिल्कुल करिए, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है भगवान का चीजें करके, पर ट्रीटमेंट नहीं छोड़िए. दूसरा टाबू पर से मैंने ये कहा कि भाई मेडिसिन एक बार स्टार्ट होती है तो वो चलती ही रहती है लाइफ टाइम. ये एक जो दूसरा मिथ है, देखो मैंने पे ही कहा है कि अगर आप इमीडिएटली डायग्नोज हो जाता है कोई चीज, इमीडिएटली आप ट्रीटमेंट लेते हो, तो शायद एड मेडिसिन बंद भी कर सकते ना, क्योंकि वो आपका टेम्परेरी फेज होता है. उस फेज अगर मैं मैनेज करता हूँ धीरे धीरे करके, मेडिसिन कम की जाती है विद डॉक्टर्स गाइडेंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन, पहले तो आपको खुद को वर्क करना होगा इसी चीज में कि ये ना ही हो. तो पॉजिटिव हेल्दी लाइफ आप करिए, को स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए जो कि आप में पॉजिटिव हार्मोन क्रिएट करेगा ब्रेन में. आप अच्छा डाइट लीजिए सो आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा. फ्रीक्वेंट और हेल्दी डाइट से अच्छे कनेक्ट रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट सोशली कनेक्ट रहिए, दोस्तों से कनेक्ट रहिए, बात करिए रेदर देन सोशल मीडिया से. अगर आप फिजिकली कनेक्ट होते हो, लोगों में बात करते हो, शेयरिंग करते हो अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ, घर वालों के साथ, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट चीज. तो ये सब चीजें अगर आप करते हैं कोई दिक्कत भी नहीं आएगी. तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन पहले, एंड अगर आती भी है तो बिल्कुल आप बिना झिझके डॉक्टर का हेल्प लीजिए.
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट. बहुत अच्छा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमें पता चली अबाउट सोसाइटी एंड उनके मिथ्स को लेकर जो मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों में थी. सो थैंक यू सो मच.
2: यस, थैंक यू सो मच.
0: स्टे ट्यून्ड.
3: Only on MGM 90.8 FM.

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली

गुलों के साए से खेलो चाहे कली से प्यार करो।

करूं, चाहे फूलों के साए से खेल।

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे। अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।